खाबेरियाओ मा यवे इमत नमानेम खात्रवत खरेनो फ्रजही। मा खात्रवैति इष्टीश मा खात्रवैति आसन फ्रजेन्तीश खात्रो दिश्ये पैति अशोईश्वं।

0: So that brings us to the end of this episode of Radio Sai Vintage Bhajan Classroom. This is the first bhajan in the second batch of Radio Sai Vintage Bhajan Classroom, where again we want to share 9 bhajans which used to be sung in the 60s and 70s in the Prashant Nilay Mandir. We have started with the first bhajan. There is more to come, more beautiful melodies, more soulful compositions, more sweet and short but lovely vibrant tunes. Dear listeners, we hope you enjoy this program. We hope you learn from this program. If you have any queries or comments, as always, you can write to us. Please send in your emails to listener@radiosai.org. We offer this endeavor with humility and gratitude at the lotus feet of our most beautiful, beloved Bhagwan.
1: You were listening to an episode of our program, Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 19th January 2017 as part of Thursday Live from Prashant Nilayam on Asia stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
2: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
3: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 21 मई 1973 की प्रातः को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
4: भूमिका। भारतीय संस्कृति की गरिमा के पुनरुत्थान हेतु भगवान बाबा ने सन 1973 मई में वृंदावन आश्रम में ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का आयोजन किया, जिनके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन भारतीय संस्कृति और शिक्षा प्रणाली के संप्रति स्वरूप का वर्णन करता है। इस अमृत तुल्य प्रवचन में स्वामी ने जीवन, संस्कृति और शिक्षा के अटूट संबंध को रेखांकित करते हुए संप्रति शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर स्पष्ट संकेत किया है।

0: अत्यंत आवश्यकता है। अस्तु।
1: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा भज गोविंदम पर दिनांक 21 मई 1973 की प्रातः को दिया गया प्रवचन सुना।
2: यू आर ट्यून्ड टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी ब्रिंगिंग यू 24 आवर्स अ डे द मैसेज ऑफ लव ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा।
3: Radio Sai Global Harmony now presents a selection of devotional songs.

0: Radio Sai takes great pleasure in bringing to you Swami's message of universal peace and love, 24 hours a day, 7 days a week. We hope you are enjoying our broadcasts and welcome you to mail your suggestions and feedback on our programs at listener@radiosai.org. That is LISTENER @ radiosai.org. We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
1: Sri Rag Mahalla Panyama जिन्ना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तनु उपजय मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल थान थन अंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए सब

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान।

आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा धार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले पाइए शब्द निदान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाईऐ नेदार आयादार जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईऐ मन की लहें परांत गुण निदान।

तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद। देखै सुने हदूर साधो घट घट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखशिंद। श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर राखी उर तार मेरे मन हर बिने अवर ना कोए प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक जिन कीता तिसै ना जाणई मनमुख पस ना पाक अंतर बाहर रव रहया तिसनों जाने दूर। तृष्णा लागी रच रहया अंतर हम मैं कूर भगती नाम विहूणिया आवै वञै पूर। राख लेहो प्रभ करण हार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा मेरा तन यार तन मेरा राज रूप मैं देश सुधारा बंता अनेक बहुत रंग अरवेश। हर नाम हृदय न वसई कार्य कितै ना लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साध की गुर।

कराए आप प्रभ सब किच सही हाथ मारा पेजी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पय प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनो विसार रहाओ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कट्टन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर जिठे विस्तार सहजे सिफती।

रह। थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर, सच पातशाही अमर सच, सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियान, सच सिर जियोन जहान, नानक जपिया सच नाम, सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, उद्दम कर हर जापना, वड़भागी तन खाट, संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूकै सोग संताप। रहाओ जिस कारण तन धारिया, सुपर डिठा नाल, जल थल महियल पूरिया, प्रभ

देख दर्शन मन साधारै पाप सगले जाहे हाँ तिलकै बलिहारणै जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै साच हर का नाओ सेवट पागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिंतु साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मंत्र जिने दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कमावै एह करनी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां दो कृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुरो सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सुजाना रहाओ। मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही। कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कछ नदर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया।

जिन गुर मिलिया सुभाए, सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए। करते हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक, सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक। श्री राग महला पंजवां, गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार। सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार। बिन साधु संगत रतिया माया मोह सबशार, मेरे साजन हर हर नाम संभाल। साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए,

गणत गणावने आईया सुहावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरड़ावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार, शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार, निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए, जा तन कंत नारावीया ता बिरथा जो बन जाए। सेजै कंत महलड़ी सूती बूझना पाए, हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए। सतगुर मेली भै वसी नानक प्रेम सिखाए, श्री राग महला पहला। आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार। साचा मान महत तू आपे देवन हार, हर जियो तू करता करतार। ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिलै आचार। रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ। गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ, आपे सागर बोए था आपे पारिया पार। साची वाट सुजान तू शब्द लंघावन हार, निडरिया डर जानिए बाजगुरु गोबार। आसर करता

सुख दाता दुख मेटनो सतगुर असर संघार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेविय गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुखे अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखकणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरियावले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए तां की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमण सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै।